0: Commerce Secretary just set out the outcomes for BRICS cooperation in the area of trade during India's chairship. However, it requires all of us to work in partnership together to translate our work into jobs for our people, wealth and prosperity for BRICS member states, who represent half of mankind and 40% of the global GDP. Friends, BRICS today represents almost one-fourth of global trade, and India is an important pillar of the intra-BRICS trade. Engineering goods and electronics account for the largest segment of India's manufactured exports. India is also known as the pharmacy of the world. We see BRICS as an important market for these and other products that India seeks to take to the world as a trusted partner. We believe trade amongst partners should be deep, resilient, with diversified supply chains, and ensuring that at no point of time trade becomes an impediment to growth and the well-being of the people of each member state.
1: आप सारे लोग जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के नाम पर सोच रहे हैं कि आपको हेल्थ के बारे में बहुत पता है, यू आर वेरी इन्फॉर्म्ड एंड लाइक अ फॉलोअर ऑफ हेल्थ वेल्थ, आपको बता देते हैं आपकी नॉलेज कितनी गलत है, क्योंकि सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI जानना जरूरी नहीं है. द रियल थिंग टू नो इन योर फूड इज GL, दैट इज ग्लाइसेमिक लोड.
2: ये सेम नहीं है, इज इट लाइक राम श्याम सीता गीता?
1: राम श्याम सीता गीता चौक इन चीज बोल सकते हैं. आइए समझते हैं. इस वीडियो के लिए हमने बात करी है डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर वी मोहन से. GI के बारे में आपको ये बात पता है कि अगर बिलो 55 है तो लो GI बोला जाता है, अगर 55 से 70 तक है तो मीडियम GI बोला जाता है, अगर 70 अबव है तो हाई GI बोला जाता है. लेकिन ये GI कैलकुलेट कैसे होता है आपको पता है? GI इन अ फूड इज कैलकुलेटेड इन अ लैब और रिसर्च ऑन फिक्स्ड पोर्शन, विच इज नॉट हाउ यू एंड आई ईट, राइट? हम उतना ही फिक्स पोर्शन थोड़ी ना खाते हैं जिसकी वजह से हमें हमारे खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता होगा. इसीलिए GL को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फैक्टर करता है ना सिर्फ क्या आपने खाना खाया पर कितना आपने खाना खाया एंड दस आपकी बॉडी पर कितना इम्पैक्ट पड़ा. एग्जाम्पल देते हैं, आप वाटरमेलन खाते हैं, उसका GI बहुत हाई होता है क्योंकि उसमें शुगर कॉन्टेंट ज्यादा है, बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज वाटर. सो आप एक नॉर्मल स्लाइस अगर लेंगे तो उसका GI आपको हाई बताएगा, लेकिन क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, वाटर बहुत ज्यादा होता है, उसका ग्लाइसेमिक लोड ऑन योर बॉडी इज वेरी लिटिल. अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ब्राउन राइस. बहुत ही हार्मलेस बोला जाता है, मीडियम GI है, बट एक नॉर्मल बोल ऑफ ब्राउन राइस अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं तो उसका कार्ब इनटेक तो बढ़ ही गया ना, कॉम्प्लेक्स कार्ब है हम समझ रहे हैं, लेकिन कार्ब इनटेक तो है, तो उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो हाई जोन में चला जाएगा और आप खाए जा रहे हैं सोच के इसका GI तो बहुत कम है. नहीं समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देते हैं, मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं. बहुत कॉन्ट्रोवर्सी है कि इसे डायबिटिक्स को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और एक अच्छा डॉक्टर आपको बताएगा कि आप कम क्वांटिटी में अगर मैंगो खा रहे हैं तो उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है. नाउ GI के हिसाब से 100 ग्राम्स ऑफ मैंगो, मतलब एक मैंगो समझ लीजिए, उसका GI होता है कम से कम अराउंड 55, राइट? एक मैंगो के अंदर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, तो अब GL इसका कैलकुलेट करने के लिए GI इनटू द नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट यू हैविंग डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये निकल कर आता है 8. बट दिस विल चेंज अगर आपने इसमें मैंगोज बढ़ा दिए, अगर आपने इसका GI जो 55 है इनटू 15 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा दिए डिवाइडेड बाय 100, तो इमीडिएटली आपका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो हाई हो जाएगा. क्रक्स ऑफ द मैटर इज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अमाउंट दैट यू आर ईटिंग एंड दैट शुड डिफाइन योर डिसीजन मेकिंग, नॉट जस्ट द GI ऑफ द फूड. कितना खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और आप फिर भी अगर ग्लाइसेमिक लोड अपने खाने का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम उसका एक कैलकुलेटर लिंक है वो कॉमेंट्स में डाल रहे हैं.

0: Mr. Narendra Modi.
1: The session is now officially called to order. Is it okay? Is it okay? Yeah. Your Highness, Excellencies, नमस्कार. भारत में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है. भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है. रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं. इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है. इसी सोच के साथ 350 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया. लगभग 30 शहरों में आपकी टीम्स का स्वागत करने का हमें अवसर मिला. भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सक्रिय योगदान और समर्थन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. फ्रेंड्स, इस वर्ष की ब्रिक्स समिट एक ऐतिहासिक पड़ाव है. हम ब्रिक्स की 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. मानव जीवन में 20 वर्ष की आयु मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के नए चरण का आरंभ करती है. यह वह अवस्था होती है जब सपनों के साथ जिम्मेदारियां जुड़ती हैं, सामर्थ्य को नई दिशा मिलती है. आज ब्रिक्स भी अपने कमिंग ऑफ एज के क्षण में है. पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बढ़ाई है. हम एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और कंसेंसस से आगे बढ़ते हैं. हम किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने का की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं. अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले. अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा. इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी. ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए. मैं ब्रिक्स कम्युनिटी कंटिन्यूटी एंड इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म का प्रस्ताव रखता हूं. इसके तहत ट्रॉयका के माध्यम से सभी इनिशिएटिव्स और आउटकम्स का फॉलोअप हो सकेगा. हम एक सिक्योर डिजिटल रिपोजिटरी बना सकते हैं. इसमें हर निर्णय के साथ नोडल पॉइंट, समय सीमा और इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस दर्ज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ब्रिक्स को मजबूत करते हुए हमें ग्लोबल रिफॉर्म की दिशाएं भी तय करनी होगी। ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। इसके ऊपरी भाग में पावर और डिसीजन मेकिंग केंद्रित है और निचले भाग में वो देश हैं जो इन डिसीजन से प्रभावित तो होते हैं लेकिन उन्हें आकार नहीं दे पाते। ग्लोबल साउथ आज वैश्विक संकटों की फ्रंट रो में है लेकिन डिसीजन मेकिंग की बैक रो में है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें जिसे हम अगली समिट तक एक ब्रिक्स रिफॉर्म रोडमैप का रूप देने का प्रयास कर सकते हैं। इस रोडमैप को बनाने में हमें 3 मुख्य पहलुओं, रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस एंड रूल मेकिंग का ध्यान रखना होगा। पहला, रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इस विषय पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए। जो देश ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देते हैं उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को दिशा देने में भी उचित भूमिका मिलनी चाहिए। दूसरा, रिस्पॉन्सिवनेस। वैश्विक संस्थानों में मानवता का विश्वास तभी बनेगा जब वे समस्याओं का प्रभावी समाधान करने में सक्षम होंगे। हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्स के स्पीड, स्केल और लास्ट माइल इंपैक्ट पर ध्यान देना होगा। सी फेरर्स का वैश्विक व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है किंतु अक्सर मुश्किल समय में उन्हें सहारे की कमी महसूस होती है। मेरा प्रस्ताव है कि क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं। इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटीज और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, रूल मेकिंग के संबंध में भविष्य के ग्लोबल रूल तय करने में समान भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एआई, साइबर स्पेस, आउटर स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भविष्य के अवसरों के साथ भविष्य के नियम भी तय कर रहे हैं। हमें ग्लोबल साउथ को रूल टेकर से रूल शेपर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। ब्रिक्स के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों के युवा डिप्लोमेट्स और पॉलिसी मेकर्स को नेगोशिएशन स्किल्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और लीगल एक्सपर्टीज प्रदान कर सकते हैं। सुखद संयोग से आज यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन है। ग्लोबल साउथ को समर्पित इस दिन पर ऐसा निर्णय लिया जाना विशेष महत्व रखता है। भारत इस विषय में लीड लेने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत में आयोजित इस ब्रिक्स समिट का संदेश स्पष्ट होना चाहिए। यदि हमारा भविष्य साझा है तो उसके निर्माण का अधिकार भी साझा होना चाहिए। फ्रॉम वॉइस टू इंपैक्ट, फ्रॉम प्रिविलेज टू पार्टनरशिप, यही ब्रिक्स एट 20 का संकल्प हो। बहुत बहुत धन्यवाद।

मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं जरा अपने टेबल पर इसको प्लीज, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इसको आप इस प्रकार से खोल करके

Thank you. फ्रेंड्स, आज की हमारी बैठक अत्यंत सार्थक और रचनात्मक रही। हमारे विचारों की विविधता के साथ साथ ब्रिक्स सहयोग के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है। हमने इस बात पर भी बल दिया कि भविष्य की टेक्नोलॉजीज और उनके नियमों के निर्माण में ग्लोबल साउथ की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। निर्णयों और उनके परिणामों के बीच जो दूरी बनी हुई है, उसे पार्टनरशिप और कलेक्टिव एक्शन से काम करना होगा। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले। ब्रिक्स चेयर के रूप में आपके बहुमूल्य योगदान, कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट और आपकी प्रतिबद्धता के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ इस सेशन के समापन की घोषणा करता हूं।

यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन है। ग्लोबल साउथ को समर्पित इस दिन पर ऐसा निर्णय लिया जाना विशेष महत्व रखता है। भारत इस विषय में लीड लेने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत में आयोजित इस ब्रिक्स समिट का संदेश स्पष्ट होना चाहिए। यदि हमारा भविष्य साझा है तो उसके निर्माण का अधिकार भी साझा होना चाहिए। फ्रॉम वॉइस टू इंपैक्ट, फ्रॉम प्रिविलेज टू पार्टनरशिप, यही ब्रिक्स G20 का संकल्प हो। भविष्य के ग्लोबल ग्रोथ तय करने में समान भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। AI, साइबर स्पेस, आउटर स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भविष्य के अवसरों के साथ भविष्य के नियम भी तय कर रहे हैं। हमें ग्लोबल साउथ को रूल टेकर से रूल शेपर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। ब्रिक्स के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों के युवा डिप्लोमेट्स और पॉलिसी मेकर्स को नेगोशिएशन स्किल्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लीगल एक्सपर्टीज प्रदान कर सकते हैं।